0: रेडियो एनआरएन 99.1 समयको ख्याल राखौं। 7 बज्यो।
1: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो साँझ पख।

0: मुलुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड